0: ती मी मरियम रिफ्का रशीद रिफ्का गार्ड दिवे ही एफएम दिवे ही नायक
1: मोदी है 1 मेगाहर्ट्ज़ दिवे ही एफएम

0: නුවදියක මෙගහර්ට්ස් දිවේ FM අබදුවස් එම්ම ගාතුග
1: साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।

es un terengue jobón. नदी के मेघट्स दिव्य फिल्म मिगड़ी का कोरिया के दाय हूं तेरी हो मैं तो के शोगन मिहा हिसाब के आ दन मैसेज आली रमीज के रे हा द लो बिन समासा कोरी में मिलव जहाल दीब एरे हा द लो बे हाय शाहू कैन यू प्लीज प्ले कभी अलविदा ना कहे ना के वे इज द पार्टी टुनाइट वारा अड़ो हाल है तो मैसेज में कोरे ओके हम मिदेला वाइवाल दी फ पत्रो कोलन

0: 91.1 मेगाहर्ट्ज दिवे ही एफएम इशान अमादो वागुतु
1: नुवदिहे एके मेगाहर्ट्ज दिवे ही एफएम
2: अल्लाहु अकबर अल्लाह

0: Maldives y FM 9.10 MHz.
1: Kulivar kulunterina e kulunteringe wahakata
2: inge waane kamekkan dengana borakon iradu kare biya barana kala korana
3: poches ehem bunaero dema waro ufave it motivates me
1: ailine kulunterina medu kura ummedu ta
4: gaganda ka visaka mubara aini mehar kulavida deng e terege international
2: vara focus re games kuleshe kulang ebban hoda
1: tapatu game ta kaeku genesteni
5: sports beat
1: homa duhuge menduru fahu de chaharu repeat angar duhuge re dihe chaharu adi buda duhuge mendamu par chaharu
6: ए मावे सुट्टा दाफिंग
7: आहार में सुट्टा दाफिंग
8: ए लिस्टो को मावे सीमा ना ला
9: अमिल्ला फैसा आंधा गें अमिल्ला हाशिंगड़ा गेल्लुं दिनों में की हाँ मौय कमे ए में मावे सुट्टा दाफिंग
1: दुम फाई आहार में गे हाथोरे दुम फतो के इस्तेमाल करूं गे साबुन दिमावा सीही मसल तो होगा आहार को हैं मिलियन वुरे की नमी हु मरुआ कमा ताफासी साब तकुं दक्का फस नुजे ही अवह दुम्फतु के इस्तियो माल कुरूं हुट्टा लमा हिंगा
10: अर्गुन में के बहुगा मिहिरा ना दिरु सिफत मिहिंदे सलामे कुरूं में अर्गुन में कुम में दिवही दरिये के विसी माए अर्गुन में के खाबा फैंगीन ने विथारी कदे में हेट्टुमा इल्मी अधीबों देख के विमागुं कुम में दिवही दरिये को इसी रमातो